हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
5: News. चाहे तो 2020 जी इलेक्शन में भी चीन हथ चुरांत जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जो 22 करोड़ फाइलू हासिल करे वरती आहिनि। अमेरिकी गुजाइदारा चूंडन बाबत इंटेलिजेंस मालूमात फराम करे जारी कन। अमरीका ईरान ते बीहर हमला शुरू करे छड़िया। ईरान ते छह डी भी बम्बारी। ईरान शहर एयरपोर्ट बंदर अब्बास में कम्युनिकेशन टावर आए लार शहर के गंडीदड़ पुल ते मिजाइल हमला। बंदर अब्बास में बिजली की फराहमी मुअतल। ईरानी मीडिया मौजूद अहवाज ए बुशर में धमाका बुधा व्या। अमरीकी सेंट्रल कमांड जो चवण आए तो ईरान में छह डी वारे कार्रवाई मुकम्मल करे वरती है। कार्रवाई जो मकसद ईरानी फौज की सलाहियत के कमजोर करणो हो। विच ओभर में 50,000 अमरीकी फौजी मौजूद आन। ईरानी हमलन से अमरीकी फौज की ऑपरेशनल सरगर्म से को भी असर न पो आए। ईरान आबनाए और उसमें बहरी जहाज से फायरिंग कई तो सख्त नतीजा भोगी। मफामत यादाशनामे की भंजकड़ी जवाब में ईरान से हमला कया आया। ईरान हाँ अमरीका जा हमला रोकने के काबिल ना रो। ईरान इन वक्त भी चाहे तो अमरीका से मुआदो थी वे। सदर ट्रंप भी मामले की सफारत लाए तैयार है। जैसे ईरान अमरीका से कल वायदन तक फिरे तो अमरीकी सदर ट्रंप उन जवाबदार बनाई। कतर ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल थे खबरों के सख्ती से रद्द कर छो। कतर ईरान खिलाफ न कें जंग जो हिस्सो नहीं बणजंद। इसराइली मीडिया जो रिपोर्ट्स बेबुनियाद ए गुमराह कंदड़ा। कतर के परदेही वजीर पांजे बयान में चया तो इसराइल के प्रोपेगेंडा जो मकसद कतर की ट्रियाकड़ी वाले किरदार से नाकारा असर विझण है। कतर खिते में अमुन ए शिकत आने के खात्मे लाए पांजे सिफारशी कोशिशों जारी रख। अमरीका ईरान मफामत यादाशनामे बनाने लाए इसराइल साजिश कई। अमरीकी सदर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस है तो इसराइली अंसरन ईरान से मुआदे से राता वहन लाए अमरीका में मुहम लाई उन वी रकम खर्च कई। अड़ी मुहम बावजूद अमरीकी मफादन के पैर तरजीह डनी वी। ईरान से तकरार जो मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई ना इहा भी एक वाज हकीकत है तो इसराइल अमरीका में अवाम की राय जंग भी हाराए रो है। ईरान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर ए बिजली घर से अमरीकी हमलन के सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी दई छी। बाबुल मंदब बंद करने की भी तैयारी ईरानी फौज के खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान इब्राहिम जुल्फकारी है तो आबना हर्म्स ईरान की रेडलाइन है। अमरीका के मुदाखलत कर नींदी अमल किया ईरान के बुनियादी ढांचे के निशाने बनाए वो तो खिते के बचल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहन्द। ईरानी फौज के तर्जमान खिते के मुस्लिम रियासतों से टकराव जो इरादो ना है। जैसे अमरीका के जंग जारी रही तो जंग नवन मुआजन तक पकड़ी वेंदी। ईरानी फौज मुल्की वकार सलामती ए सरहदों को तहफुज कर जारी थी। परदेही खबरू इदारे मूजिब ईरान बाबुल मंदब बंद करने के हवाले से हुसैन तक पैगाम पहुंचाए छोड़।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिते में जारी शिकतान सबब कंहिं बि इम्कानी चैलेंज खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारीअ जी हिदायत करे छॾी। पेट्रोलियम शयूं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई जी हिदायत। शहबाज शरीफ जी सदारत अहिड़े इजलास ऐं पेट्रोलियम शयुनि ऐं तवानाई बजेट जी क़ौमी मुहिम में आवाम जे सहकार जी साराह। वज़ीर-ए-आज़म चयो त गडि॒यल सादगी ऐं किफ़ायतशारी मुहिम में आवाम भरपूर किरदार अदा कयो। हुकूमती सब्सिडीअ सां तेल अघनि में वाध जे असरनि खे मौसर अंदाज़ में कंट्रोल कयो वियो। आम माण्हुनि, मोटरसाइकिलनि, रक्षा ड्राइवर ऐं ट्रांसपोर्टनि खे बि तहफ़ुज़ ॾिनो वियो। पेट्रोलियम शयुनि जी हथरादि खोट ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। ज़रूरत पवण ते वक्ताए ते हिकमत अमली जोड़ी वेंदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन जे ॿिन ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते शिंघाई पहुची वियो। इसहाक़ डार वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन जे क़याम वारे मुआहिदे ते सही कई। परडे॒ही तर्जुमान मयो इसहाक़ डार AI कॉन्फ्रेंस तक इफ़्तिताही तक़रीब में शिरकत सां गॾु मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परडे॒ही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं बि कंदो। बलोचिस्तान में पाक फ़ौज, AFC ऐं पुलिस जो गडि॒यल ऑपरेशन शोबान जारी। वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शोबान ऐं मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु मजमूई 91 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ख़ारिजनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। फोर्सिस पारां दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि खे कामयाब सां निशानो बणायो वियो। 5 जुलाई खां मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन ऐं मजमूई तौर 129 दहशतगर्द जनम भेड़ो थी चुका। आख़िरी दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रखण जो अज़म। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण मौलाना फज़ल रहमान खां शहीदनि बाबति बयान वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। शर्जील मेमण चयो त मौलाना फज़ल रहमान शहीदनि बाबति ॾिनल पंहिंजो बयान वापसि वठे। बयान वापसि वठण सां मौलाना जी इज़त घटि न थींदी। मौलाना फज़ल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

السلام علیکم سمن جی ایف ایم 88.8 لاڑکانے جی لائیو سٹوڈیو ماں پروگرام روشن صبح سان کرے اواں جو پنجو میزبان نعمت اللہ جونے جو اواں جی خدمت میں حاضر ائیں قبول پوے سکھ بھرو سلام جی سمن کیڑا رنما جا خوش آیو ٹھیک آیو جاٹ چنگا بھلا ای ہر پل ہمیشہ اواں پیارن سجنن لائے ایہی دعا ہوندی آہے त जिते बि जो ख़ुशि ऐं ॾुखियो ॾींहुं ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदो आमीन साईं मुंहिंजा अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं ऐं जुलाई महीने जी 17 तारीख़ 2026 ऐं सफ़र उल मुज़फ़र महीने जी अॼु ख़ैर सां 2 तारीख़ आहे साईं मुंहिंजा इहा हक़ीक़त आहे त हीअ कुल काइनात हूंदी कंदासीं ऐं हीअ काइनात क़यामत ताईं क़ाइम ऐं दाइम रहंदी बेशक कुदरत जो कानून आहे जीअं असां खां अॻु असांजा आबा ॾाॾा पड़ ॾाॾा हुआ हाणे उहे न आहिनि ऐं असीं आहियूं वरी असां ऐं असांजा आबा ॾाॾा जीअं असां पाण आबा ॾाॾा बणजी वेंदासीं ऐं वरी पाण बि फना थी वेंदासीं अहिड़ी रीत हिन काइनात जो चरखो अल्लाह ताला जे हुकम सां पियो हलंदो रहंदो सिर्फ़ अल्लाह ताला जो नालो ऐं हुन जी हबीब ख़ातम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जो वजूद क़ाइम ऐं दाइम रहणो बाक़ी इंसान फना थियण बाद हुन जो फन फिकर ऐं किरदार ज़िंदा रहंदो जेको हुन जो नालो ज़िंदह रखियो पियो ईंदो बाक़ी असां न रहंदासीं तंहिं करे जेतिरो थी सघे पंहिंजो किरदार बेदाग रखूं ऐं दुनिया में प्यार मोहबत विरहायूं ऐं नफ़रतूं दिलि मां कढी छॾियूं ऐं हिन काइनात में माण्हुनि जे दिलि में पंहिंजो नालो रोशन कयूं उहो नालो रोशन तॾहिं थींदो जॾहिं अल्लाह ताला जे हुकमनि ते हलंदासीं ऐं रब पाक जो नालो पिया खणंदासीं इबादतूं पिया कंदासीं।

52 हुअं त हर माण्हूअ जी ज़िंदगी हिकु खुलियल किताब जीअं हूंदी आहे। अज़ीम इंसान जी हयाती जूं कहाणियूं असांखे उन्हनि जी बा कमाल ऐं बेमिसाल हयाती जूं यादि ॾियारनि थियूं, ऐं असां उन्हनि मां सुठी मंज़िल माणे मक़सदु हासिल करे सघूं था। जन इंसान पंहिंजी हयाती ज़ीरो खां शुरू कई हुजे ऐं पंहिंजे अणथक महिनत सां तरक़ी जूं मंज़िलूं तय कंदे को आला मक़ाम माणियो हुजे, त अहिड़नि अज़ीम इंसान हयाती गुज़ारण जूं वारियूं जेके सभु हुन में सलाहियतूं हूंदियूं आहिनि उहे क़ाबिल तारीफ़ हूंदियूं आहिनि। ऐं असां सभिनी लाइ मिसाल आहिनि, जेको इंसान पंहिंजी हयाती में कंहिंखे को नुक़सान नथो रसाए या को नेकी भलाईअ जी राह ते हलंदे हयाती पूरी करे वञे थो, त उहो इंसान मरी वञण खां पोइ बि ज़िंदा रहे थो। अहिड़नि इंसान खे अज़ीम इंसान चयो वञे थो ऐं उन में को शक न आहे।

0: सचल की सर मस्त धरती
1: फातिये मेहरान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान?
2: दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सूजन

0: विश
1: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
0: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
0: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
0: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: महरान की सकाफ़त से गुंदा हुआ। जोर से बंधा हुआ
3: नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: FM 88 नेटवर्क
1: की आवाज।
2: ऐं जेकॾहिं तालीमी पंहिंजो लिहाज़ खां ॾिसजे त असां जेके तालीम में तव्हां एडमिशन फॉर्म भराईंदो या एग्ज़ाम फॉर्म हूंदो त हुन में फोटो ज़रूरी आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि गवर्नमेंट जॉब तव्हां डॉक्यूमेंट्स में तव्हांखे फोटो ज़रूरु ॾियणा पवंदा, कंहिं बि तव्हांजा फोटो ज़रूरु लॻंदा। ऐं अॼुकल्ह त फोटुनि जो एतिरो रवाज थी वियो आहे जो जेकॾहिं असां मानी खाऊं था त बि फोटो कढूं था। घुमण फिरण वञण जो सिस्टम आहे ऐं सेल्फियूं त अॼुकल्ह तमामु घणियूं थी वञनि, जिते अचो बीहो त सेल्फी थी वञे। सो फोटुनि जो तमामु घणो रवाज थी वियो आहे ऐं फोटुनि जे सुम्हण में जेकॾहिं को धड़ फोटो कढे ऐं असां को माण्हू तबियत सही न आहे, बीमार थी पियो आहे, जेकॾहिं को माण्हू ड्रिप चढ़ाए थो, पंहिंजो स्टेटस ज़रूरु लॻाईंदासीं मां ड्रिप चढ़ाई आहे। बहरहाल मास्टर मंज़ूर कलाम आहे ऐं हुन में बि हिकिड़ो फोटो जो ज़िक्र अचे पियो, अचो त गॾिजी ॿुधूं।

अजीत साईं जा पाण गाल कंदास इंसान जी जिंदगी में रब पा जज्बो रखे तो है मोहब्बत असी मोहब्बत वसीले बे कहीं परेशान हाल जी का मुर्क आंदी हुए जिंदगी में राहत है दार है तो असा के इंसान जरिए मिले थी जी पा भी सब कुछ जो तवाजे वस में है पांजी दिल जो अजीम मकसद हासिल करने लाए जिदो उन्होंने मोहब्बत करूं जी तवाजी यार कन था प्यार उहो हुए जो बिना मतलब के हुए मसलस खुशन में पान उन्हें जे में शरीक थी वनों घुर्जे एक कम तारा बैठल पर

अजी समय प्रोग्राम रोशन सुबह जारी उसारी तवाजो साथ रहो ठीक यारे वगे ती कड़े में नो इन वक्त हलूं पा न्यूज ब्रेक की तरफ ए कमर्शल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदासी।

0: मटियारी और मटियारी 91.6।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
4: बुनियाद है गुमराह कदड़ आहिनि कतरी परडे॒ही वज़ारत पंहिंजे बयान में चयो आहे त इसराइल जे प्रोपोगेंडा जो मक़सद कतर जे टकियाड़ी वारे किरदार ते नाकारी असर विझण आहे। कतर खिते में अमुन ऐं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ पंहिंजूं सिफारती कोशिशूं जारी रखंदो। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त नाकाम बण साज़िश कई आहे। चयो आहे त इसराइली अंसरनि ईरान सां मुआदे ते राहतो हणण लाइ अमेरिका में मुहिम हलाई ऐं हुन ते वॾी रक़म ख़र्च कई। अहिड़े मुहिम बावजूद अमेरिकी मुफ़ाहिदनि खे पहिरीं तरजीह ॾिनी वेंदी। तकरार जो मुस्तक़िल हल फ़ौजी खां हिकु वाज़े हक़ीक़त आहे त इसराइल अमेरिका में अवामी राय जी जंग बि हाराए रहियो आहे। ईरान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं बिजली घरनि ते अमेरिकी हमलनि जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी ॾेई छॾी। बाब अलमंद बंद करण जी बि तयारी ईरानी फ़ौज जे ख़ात्मो नबी वायत वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढंढो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरानी फ़ौज जे तर त खिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फ़ौज मुल्की जे तहफ़ करण ॼाणे थी। परडे॒ही ख़बरू इदारे मूजिबि ईरान बाबुल मंद बंद करण जे हवासीन ताईं पैगाम पहुचाए छॾियो। जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI खे चीन खिलाफ़ जांच जो हुकुम। कौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। अदालती चूंडनि जा नतीजा 2020 जे हुई चीन हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियूं ख़त्म थींदियूं। मलीर में सुपर हाईवे कोयटा टाउन गेट वे जो पुलिस मुकाबलो 2 फोरू मारिजी विया। पुलिस मौजूद मारिजी वियलनि फोरुनि जी सुञाणप सईद वलिद मोरू वलदीन ऐं शेर खान वलिद मेहराब तौर थी आहे। फोरुनि जा लाश एम्बुलेंस वसीले जिनास क्रिमिनल रिकॉर्ड रहमयार खान वे जो बस पुलिस मुकाबले में हिकड़े चेकिंग दौरान रोकण ते मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन पुलिस अहलकारनि फायरिंग करे ॾिनी। जवाबी फायरिंग में हिकु हथियार थॾे ते ई मारिजी वियो। संदसि ॿिया साथी फरार थी विया। मारिजी वियलनि जो हर थी वियल साथियुनि जी ऑपरेशन जारी आहे। DPO रहमयार खान।
2: सोलर ऐं बैटरी
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है।

0: सुनते रहो GAFM
1: 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तह और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

ऐं उते डुकर थी पवंदो हुयो। हिन जदीद दौर में माकड़ जीतमार दवाऊं तयार कई वयूं आहिनि हुन जे ख़तम करण लाइ, जिते स्प्रे ऐं इस्तेमाल करण सां माकड़ ऐं संदसि फसल खे बुनियादी तौर ते पंहिंजो हुन खे माकड़ खे मारे ख़तम करे छॾे थी ऐं पंहिंजो फसल सही नमूने बहितर नमूने तयार थी वेंदो आहे। त साईं जा माकड़ हिलाल जीत आहे, ईंदी वक़्तनि वक़्तनि ईंदी आहे, कोन थो सघे फसल लाइ नुक़सान।

साईं जा हिकिड़ो एहतियात जो पंहिंजो ज़रूरी आहे तव्हांखे ॿुधाइण, ऐं तव्हां पंहिंजो कोशिशि कंदा रहो त जेके तव्हांजा ॿार नंढड़ा स्कूल वञनि था, ऐं जेके बुज़ुर्ग वॾा ॻोठ में निकिरनि था, ॿहराड़े में निकिरनि था, या अॼुकल्ह शहर में बि कुतनि जो आज़ार तमामु घणो आहे। कुते जो ॾाढण या चक पाइण जा असांजे मुल्क में केतिरा ई वाकिया बि पेश आया आहिनि, जेकी माण्हुनि जे मौत जो कारण बि बणजनि था। ऐं कुते जो चक हुजे या कुए ॿिली, उन्हनि जो ॾाढण या चक पाइण सां उन्हनि जे वात मां जेका गिग निकिरे थी ऐं इंसान जे जिस्म में कंहिं बि हिसे में मुतासिर उन खे करे थी, छो जो उन जे गिग में ख़तरनाक जरासीम थियनि था जेकी माण्हुनि जे मौत जो जल्दी कारण बणजनि था। अहिड़नि जानवरनि या ख़तरनाक जीतनि जे चक पाइण खां पोइ जल्दी कंहिं न कंहिं शहर जे वेझे हॉस्पिटल वञी करे पाण इलाज कराइजे, जीअं कंहिं वॾे नुक़सान खां माण्हू पाण बची सघे। ॿियनि जानवरनि सां हरगिज़ पाण खे पोइ

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: Darya Esim ki lehron.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: फकीरी नीम प्रिकली जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करना है। फकीरी नीम प्रिकली हीट
1: अच्छे स्टोर से तलब कीजिए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
5: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

तव्हांजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां नेमत अलाह जुणे जो ऐं सिंह जा चवंदा आहिनि त कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे ऐं कामयाबी तॾहिं बि कॾहिं बि ॼमण सां गॾु ऐं ना ही मिलंदी पर कामयाबी महिनत ऐं जाखुड़ सां मिलंदी आहे। मालिक हक़ीक़ी बि महिनत करण वारनि जी मदद करे थो। खाइण पीअण घुमण फिरण ऐं सुम्हण खे ज़िंदगी नथो चइजे। हिकड़ा बिना मक़सद जे जीअनि था ऐं ॿिया मन में मक़सद रखी जीअनि था। मतिलब मज़बूत इरादे वारा इंसान कामयाबी माणनि था ऐं कामयाबी जी राह में हर वधंदड़ इंसान मंज़िल ताईं पहुची सघे थो। कॾहिं बि मायूस थी हार न मञजे। जेकॾहिं कंहिं मक़सद खे सची दिल सां पूरो करण चाहींदो त काइनात जो ख़ालिक़ नेक मक़सद में अव्हां जी मदद ज़रूर कंदो ऐं हरगिज़ नाकामीअ जो ख़ौफ़ दिल में न रखिजे। जेसी ताईं इंसान पंहिंजे अंदर जो ख़ौफ़ ख़तम न कंदो तेसी ताईं कामयाबी ॾांहुं हिकु बि क़दम न वधाए सघंदो। महिनत में अज़मत आहे ऐं महिनत सां ई कामयाबी आहे ऐं कामयाबी इंसान हासिल करे सघे थो। तॾहिं चवंदा आहिनि त कोशिश ज़रूर कजे छो त कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे।

जी सिंह जा प्रोग्राम रोशन सुबुह जो आखिरी लम्हा आखिरी लम्हन में तवां जी जेका सिक है प्यार मोहब्बत चाहत तां जेको असां गड रहयो बिन कलाकन जो सफर आए उनमें कुछ नाला तवां जा असां तई मौजूद आहिनि जेके अवां तई पहुचाईंदासीं तवां जा नाला तवां जा दोस्त बुधंदा त गो चक शहर खां नई मंगरियो बि असांखे यादि कयो ऐं कुरेशी माला सखर खां अब्दुल्ला चनो ऐं लाड़काने खां आमिर जागिरणी बलोच बि असांखे यादि कयो दोस्तनि जी वॾी महिरबानी मोहम्मद अज़ीज़ जरवार वसीम जरवार मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलिक रेहाना खान बखर खां ऐं हाजी सोरा मंगरियो फरान मंगरियो नज़र मोहम्मद मंगरियो ॻोठ सचिरण मंगरियो लॻे बकापुर खां आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां ख़ालिक लाशारी इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां ॻोठ ठुल जुणे जो खां अबरार अली जुणे जो इक़रार अली जुणे जो ऐं वकार अली जुणे जो क़ुर्बान अली ख़ासि खिली झंडो मरी खां ऐं असांखे यादि कयो दुआ लाड़काणे खां सभिनी जे नां कयूं पिया जलाल चांडे जो ख़ुशि नगमो गॾिजी पिया ॿुधऊं

जी समझ आया कुछ दोस्त नाला अची वो SMS जरिए मोहम्मद शरीफ पंजो छुट्टो आ या भुट्टो आ उनकी स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है दरेजी बलोचिस्तान का लाड़काने का आमिना बतूल भी असा याद कर।

जी समय जलाल चांडी के इन खूबसूरत नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंची पे पंहिंजी पुॼणी ते पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूनी जो ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना। अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: Kabil nahi rahe ho. ईरान हिन वक्त भी चाहे थो त अमेरिका सां मुआहिदो थी वञे। सदर ट्रंप चयो त बि मामले जी सिफारती हल लाइ तयार आहे। जेकॾहिं ईरान अमेरिका सां कयल वाइदनि तां फिरी थो त अमेरिका सदर ट्रंप हुन खे जवाबदाह बणाईंदो। कतर ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयुनि में शामिल थियण वारनि ख़बरनि खे सख़्तीअ सां रद्द करे छॾियो। कतर ईरान ख़िलाफ़ न कंहिं जंग में हिसो हो न ई बणजंदो। इसराइली मीडिया जूं रिपोर्ट्स बेबुनियाद ऐं गुमराह कंदड़ आहिनि। कतरी परडे॒ही वज़ारत पंहिंजे बयान में चयो आहे त इसराइल जे प्रोपोगेंडा जो मक़सद कतर जे टकियाड़े वारे किरदार ते नाकारी असर विझण आहे। कतर खिते में अमुन ऐं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ पंहिंजूं सिफारती कोशिशूं जारी रखंदो। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त नाकाम बणाइण लाइ इसराइल साज़िश कई आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेनस चयो आहे त इसराइली अंसरनि ईरान सां मुआहिदे ते राहतो हणण लाइ अमेरिका में मुहिम हलाई ऐं हुन ते वॾी रक़म ख़र्च कई। अहिड़े मुहिम बावजूद अमेरिकी मुफ़ाहिदनि खे पहिरीं तरजीह ॾिनी वेंदी। ईरान सां तकरार जो मुस्तक़िल हल फ़ौजी कार्रवाई नाहे। इहा बि हिकु वाज़े हक़ीक़त आहे त इसराइल अमेरिका में अवामी राय जी जंग बि हाराए रहियो आहे। ईरान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं बिजली घरनि ते अमेरिकी हमले जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही ॾेई छॾी। बाब अलमन बंद करण जी बि तयारी। ईरानी फ़ौज जे ख़ात्मुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्कारी चयो आहे त आबना हरमुज़ ईरान जे रेड लाइन आहे। अमेरिका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान मजीद अलकरमुनिया चयो आहे त खिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फ़ौज मुल्की वक़ार सलामती ऐं सरहदनि जे तहफ़ करण ॼाणे थी। परडे॒ही ख़ाबरू इदारे मूजिबि ईरान बाबुल मंद बंदि करण जे हवाले सां होसीन ताईं पैगाम पहुचाए छडि॒यो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। कौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडनि जा नतीजा तब्दील करण चाहे थो। 2020 जे इलेक्शन में बि चीन हथ चिरांद जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइलूं हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा चूंडनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियूं ख़त्म थींदियूं। मलीर में सुपर हाईवे कोटिया टाउन गेट वेझो पुलिस मुक़ाबलो 2 फोरू मारिजी विया। पुलिस मौजूद मारिजी वियलनि फोरुनि जी सुञाणप सईद वलिद मोरू वलदीन ऐं शेर खान वलिद मेहराब तौर थी आहे। फोरुनि जा लाश एम्बुलेंस वसीले जिन हस्पताल मुंतकिल। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कयो पियो वञे। रहम्यार खान वेझो बस्ती गुजरान रोड ते मुबैना पुलिस मुक़ाबले में हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। पुलिस मौजूद स्नैप चेकिंग दौरान रोकण ते मोटर साइकिल सवार हथियारबंदनि पुलिस अहलकारनि फायरिंग करे ॾिनी। जवाबी फायरिंग में हिकु हथियार थॾे ते ई मारिजी वियो। संदसि ॿिया साथी फरार थी विया। मारिजी वियलनि ॾोहारियुनि जे फरार थी वियल साथियुनि जी गिरफ़्तारी लाइ सर्च ऑपरेशन जारी आहे। DPO रहम्यार खान इरफान अली समूह कामयाब ऑपरेशन ते पुलिस टीम खे शाबाशी ॾिनी।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
2: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
4: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलते गम है कि मैं नहीं रोया।

प्रोग्राम वरी ऑन एयर थियो आहे ऐं ॾिसूं था त अॼु कहिड़ा कहिड़ा जेके मुंहिंजा लिसनर्स आहिनि जेके मुंहिंजो प्रोग्राम शौक़ सां ॿुधंदा आहिनि जेके मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल बि थींदा आहिनि ॾिसूं था अॼु उहे कहिड़ा कहिड़ा मुंहिंजा भाइर या भेनरूं असांजे प्रोग्राम में शामिल थियनि था।

गुलाबन जे खुशबू से महकजी वी है तवा भी असा जे प्रोग्राम में गुलाबन जे खुशबू से शामिल थी सको असा जे प्रोग्राम में शामिल थे लिखो स्पेस लिखो पांजो नालो पांजे गोठे या शहर जो नालो लिखी करे

नवीटा साईं बेहतरीन कलाम खां पोइ कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। मोहम्मद उर्स पाण जुड़ी रहियो आहे ऐं हुन सां गॾु आहे शुएब अली सेठार ऐं मोहम्मद उर्स बि सेठार, ठीकु आहे, ऐं ॻोठु अलह बचायो सेठार खां ऐं शाहिद जेको आहे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई। दादा तव्हां ॾाढा ख़ुशि नसीब आहियो, तव्हांजो मैसेज पहिरें खां शाहिद बाबर जी आवाज़ ॾाढो सुठो ऐं वॾी में प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। लख गुरबे लख अहिड़े तरीक़े कचे रोड खां असांजे प्रोग्राम मोहम्मद साहिद सूमरो हुन सां गॾु आहे डॉक्टर जावेद अली अदा जन चवनि था कलाम ॿुधायो जेको डेडिकेट मोहम्मद अली भुट्टो साहिब आदिल बुगियो ऐं पंहिंजा समूरा दोस्त ऐं सभिनी लिसनर्स खे अस्सलाम अलैकुम सलाम मुंहिंजा मिठा ऐं अदा जन लिखियो अदा मां ठीक ठाक तव्हां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियां। कोशिश कयूं था तव्हांखे

तमन में था सही जिंदगी के अक्सर एक इम्तिहान से तशबीह दिनी वी है छो तो इन दुनिया में हर इंसान के न मुख्तलिफ़ हालतुन मुश्किलातुन आजमाइशन में गुजरण पवन जी इम्तिहान में शागिर्द की काबिलियत मेहनत सब्र के परखो वेंद है तीय जिंदगी में भी इंसान के हौसले ईमान बर्दाश्त के परखबो है जिंदगी में कदें खुशियों मिलन थियं तो वरी कदें दुख तकलीफू उहे सभु हालतूं असल में इम्तिहान जो हिसो हूंदियूं आहिनि जेकी माण्हू सब्र हिमत मेहनत सां उन्हनि हालतुनि खे मोहं ॾिए थो उहो कामयाब थींदो आहे जेॾहिं त जेको मायूस थी वञे थो उहो ज़िंदगी जे इम्तिहान में पोइते रहिजी वञे थो ज़िंदगी जो इम्तिहान सिर्फ़ ॾुखनि ताईं महदूदु न आहे पर ख़ुशियूं बि हिकु क़िस्म जो इम्तिहान अथव जॾहिं इंसान खे कामयाबी दौलत सां इज़त मिले थी न तॾहिं बि उहो ॾिठो वेंदो आहे त हू उन्हनि मां या उन्हनि खे कीअं इस्तेमालु करे थो छा हू शुक्रगुज़ार बणिजे थो या गुरूर में अची वञे थो हीउ इम्तिहान इंसान खे सेखारे थो त हू हर हालति में मज़बूत रहे पंहिंजे मक़सदनि ते क़ाइमु रहे ऐं सचाई जो साथ न छॾे महिनत ईमानदारी ऐं सब्र अहिड़ा औज़ार आहिनि जेके इंसान खे ज़िंदगीअ जे इम्तिहान में कामयाबु बणाइनि था ज़िंदगी हिकु अहिड़ो इम्तिहान आहे जेको हर कंहिंखे ॾियणु लाज़मी आहे हिन इम्तिहान में कामयाबी हासिल करण लाइ ज़रूरी आहे त इंसान हिमत न हारे हर मुश्किल खे सिखिया समझे अॻिते वधंदो रहे अहिड़ी तरह त इंसान पंहिंजी ज़िंदगीअ खे कामयाब ऐं बामक़सदु बणाए सघे थो

0: स्कोप से मिले चमतास्की के एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सलामत हुजो अदा जन चवन था असांखे अहमद मुगल जो कलाम ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजे मिठा साईं अहमद मुगल जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं दिल वॾी कयो ऐं इनशाला ताला अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं स्पेशली मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कात ॻोठा जी ग़ुलाम ख़ासि खेली लॻे जिंदो झंडो मोरीअ खां कुर्बान अली ख़ासि खेली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो अदा कुर्बान बि असांजो पुराणो लिसनर आहे ऐं अदा जन बि असांजे शो में शामिल थींदा रहंदा आहिनि ऐं हिकु दफ़ो न काफ़ी दफ़ा मुंहिंजे हिन शो में शामिल थींदा आहिनि ऐं वॾी महिरबानी भाउ तव्हांखे स्पेशली मां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवां थो मोहम्मद उर्त सेठार शुएब अली सेठार ॻोठ अलाह बचायो सेठार खां ऐं शाद बाबर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त महिरबानी प्यारा अलाह सां तव्हांखे ख़ुशि रखंदो अहिड़े ई तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिल थी सघो था एस एम एस जे ज़रिए ऐं एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो एम आर ओ लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते।

मोरो जो बेहतरीन आवाज बेहतरीन मोरो जो फनकार दिलशेर तिवणे जे आवाज में तवा के सॉन्ग बुधरायो से तवा जे मिठा सही तवा भी असन शो में शामिल थी सको ता बदरे एसएमएस से एसएमएस कर जो है आसान है पजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हल्या वणो एम आर ओ लिखो स्पेस दियो स्पेस का पय लिखो पाचो नालो पजे गोठ या शहर जो नालो ए लिखी करे मोकलियो असन हा 888 1 ते

अहमद मुगल जी खूबसूरत आवाज ए पांजे महबूब के भली कार चवे तो चवे तो दिल जो महबूब इंसान की जिंदगी में एक खास हैसियत रखे तो महबूब की आमन से जिंदगी में खुशियों जहा नवा रंग पखड़ी वन था दिल के सुकून मिली वे तो चेहरे से मुर्क पान मुरादो जाहिर थी वे थी महबूब अगर वो एक शख्स न पर उम्मीद मोहब्बत ए वफा जो खूबसूरत एहसास सजो वो है जडे महबूब डिघे विछोड़े का मोटी अचे न तो संदस भली कार कर मोहब्बत इज्जत खुशी जो इजहार हों तबर जर महबूब हो तट अचे तवासा मिले वरी जडे वो वापस हलो वे तो कैफियत कि होंगी उन कैफियत के शायर पांजे लफ्जन में अड़े तरीके से चवे तो रात सजी मुझी अख न लगी रात सजी मुझी अख न लगी तुझे वन रात सजी मुझी अख न लगी तुझे वन तू तो हलो वे केर मुखे परचाए मुझे रोयण का मच्छी पानी बिना जी तड़पे कूंज विछड़े वलर खां फतके इं रुनुस जी ससी रुनी पुनल जे छिजण का

प्रोग्राम में दोस्तों मैसेजेस भी आए भी गडो गड शामिल कदा था हलूँ तो असो प्यारो भा आई अब्दुल रहीम चवे तो अदा सही तहरी गाल फरमाइश मां पूरी कई है उम्मीद तक सुनो यो सॉन्ग लगो हों अहमद मुगल जो अदा जन चवन था अदा सही खजिन की मौसम अची वे यार यकीन कर खुश नसीब मू आ तहां जेके सखर वारा दोस्त आहिनि जेके दोस्त आहिनि इहे इन्हनि वटि खजी तमामु घणी थींदी आहे न ऐं असां हेॾां वारा वरी पोइ इन तरफ़ वारनि पिया ॾिसंदा आहियूं त मन को महबूब राज़ी थी पवे।

वॾी महिरबानी आहे मीठा। ऐं अदा जन चवनि था अचो, ऐं ॾंग खजी जेका आहे न उहा तयार थी वई आहे यार। बिल्कुलु ॾाढी ऐं डिघी मोकल तकरीबन 10 ॾींहनि जी हुई। 10 ॾींहनि खां पोइ वापसि आयासीं। हाणे कंपनी न छॾींदी बाबा हेॾां तोॾे अचण जे लाइ। बरहाल इहो आहे त इनशाला ज़रूरु अचिबो, ऐं अगरि नसीब हूंदो त इहे तव्हांजा ॾंग ॾोॾा असां हिते बि खाई सघूं था। त अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो प्यारा। महिरबानी तव्हां असांखे इनवाइट कयो। इहे तव्हांजी मुहबत हूंदियूं आहिनि, इहो तव्हांजो प्यार हूंदो आहे। हक़ीक़त इहा आहे त इहे ॾंग या खजी या खजूर या त मोरो में बि या त मीरपुर में बि मिलंदी, या लाड़काणे में बि मिलंदी, पर इहे तव्हांजी मुहबतूं आहिनि जेको तव्हां असांखे जेको आहे प्यार मां पाण ॾे दावत ॾियो पिया। उन जे लाइ असां तमामु घणा तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं। त असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे सोबिया। चवे थी आप कुझु अपने पसंदि का सुनवा दे। अच्छा सोबिया, मुंहिंजी पसंदि जी अगरि तव्हां ॻाल्हि कंदा त मां ॾाढा फास्ट जेके सॉन्ग हूंदा आहिनि उहा मुंहिंजी पसंदीदा हूंदो आहे। जॾहिं मां गाॾी में वेंदो आहियां त बि जेके बि मुंहिंजी लाइब्रेरी हूंदी आहे उहे तमामु तेज़ हूंदा आहिनि सॉन्ग्स। मिसाल तौरु रिमैक्स त ईअं आहे त तव्हांखे तकरीबन मुंहिंजी पसंदि जो अंदाज़ो जेके मुंहिंजा लिसनर्स आहिनि उन्हनि खे त लॻी चुको आहे, पर मां कोशिशि कंदो आहियां त हिन प्रोग्राम में पंहिंजी पसंदि खां वधीक तव्हांजी पसंदि खे अहमियत ॾियां। ऐं बिल्कुलु तव्हांखे मां पंहिंजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम ममता शोकनवा ऐं पन्नू आईनू अकल खां शाह साहब। तव्हांखे स्पेशली मां भलीका ताहिर लुंड ऐं ज़वार मोहम्मद इहे हुन सां गॾु आहिनि। वॾी महिरबानी भाउ, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। साईं तव्हां प्ले कयूं था, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। हिन लिसनर्स आहिनि ऐं जन त ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती सां गॾु मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण। त दोस्तनि जा मैसेजिस मुसलसल अचनि पिया, उहे बि शामिल कंदा हलूं। रियाज़ अहमद पाण खे ॿुधी रहियो आहे बांदीअ मां, ऐं अदा जन चवे थो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं जन, चवंदा असांखे मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॿुधायो। जी मुंहिंजा मिठा साईं, मास्टर मंज़ूर जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। ॾाढा सुठा सुठा मास्टर मंज़ूर जा कलाम असांजी लाइब्रेरी में मौजूदु आहिनि, ऐं उहे कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेके तव्हां ॿुधाई न हूंदा। असांजे प्रोग्राम सां गॾु आहे केरु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो। चवनि था अस्सलाम वालेकुम प्यारा भाउ गुलाब खान, सदाई ख़ुशि हुजो। वालेकुम अस्सलाम अदा पठाण खान खोसा साहिब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, तबियत सही आहे तव्हांजी। अदा जन चवनि था लैला सुमरो जो प्रोग्राम 2 कलाक कॾहिं हलंदो। अबा लैला जो प्रोग्राम हिन वक़्तु असां वटि ऑनियर थी रहियो आहे जेको तव्हां ॿुधंदा आहियो राति जो 9 वॻे खां वठी 10 वॻे ताईं। 2 कलाक जो बि हुनखे टाइम मिली वेंदो, परेशान न थियो। वॾी महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो। सॉन्ग आहे ज़बरदस्त ममताज़ मौलाई जी आवाज़ में, अचो त हुनखे इंजॉय कयूं।

इन सॉन्ग खां पोइ जेको आहे न न्यूज़ ऐं कमर्शियल ब्रेक जो टाइम आहे, तेसोड़ी तव्हां ही सॉन्ग इंजॉय कयो, न्यूज़ ॿुधो ऐं केॾांहुं बि न वञो, ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: Express PM This project is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account भरोसा भी रफ्तार भी बैंक Al Habib रिश्ता भरोसे का
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News

0: कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोड हादसनि में बजणा फौत कोरंगी बिलाल चोरंगी वटे मोटर साइकिल यूनिवर्सिटी रोड ते
1: Are you a trader in FTMO?
0: ताल मुंतकिल

0: कशरत जो लाश हथ मुड़स ते कतल जो इल्ज़ाम गोठ मोहब अली सी शरीफा नसरानी जो लाश के बी फीडर मां मिलियो। औरत जे वारसन चयो आहे त खेस मुड़स कतल कयो आहे। मुड़स जो बि चवण आहे त ज़ाल घरां निकिरी के बी बेदर्द जे टपो ॾेई आपघात कयो आहे।
1: 16 ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु
2: आप सुन रहे थे पर
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। 91.6
4: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
5: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
4: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
5: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
4: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
5: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
4: इस्तेमाल कीअं कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: करे तो तवां जी जिंदगी में कड़ा वाकया रुनुमा थियन था, तवां जी जाती एतराम जी बेहतरीन तारीफ उहा बतव तव्हां पाण खे केतिरो पसंदि करियो था। तव्हां पाण खे जेतिरो वधीक पसंदि कंदव, तव्हांजी कारकर्दगी ओतिरी ई बहितर थींदी। ज़ाती एतराम तव्हांजे शख़्सियत जो अहम रदे अमल ज़ाहिर करे थो। त ज़ाती एतराम तव्हांजी तरबियत खे बि ज़ाहिर कंदो आहे। ज़ाती एतराम तव्हांजी बोलचाल, हलण, तव्हांजो मिलण, इहे समूरनि शयुनि खे बि ज़ाहिर कंदो आहे त तव्हां बचपन खां कहिड़े क़िस्म जो तालीम तरबियत वरिती आहे। त जेकी असांजा नौजवान नसल आहे, जेकी हिन वक़्तु टिकटॉक जी पैदाइश, जंहिंखे असां चई सघूं था जंहिंजी तरबियत हींअर वॾड़ा न पिया कनि, उन्हनि जी तरबियत टिकटॉक करे रहियो आहे, त उन्हनि खे घुर्जे। स्पेशली मां मैसेज जेको पंहिंजे हिन FM रेडियो जे तवसुल सां तव्हां थोरी पहुचाइण चाहियां पियो, उहो इहो पियो पहुचाइण चाहियां त असांखे पंहिंजे खां असांखे तरबियत करणु घुर्जे। असां मोबाइल फोन ते हुननि खे त नथा भाड़े सघूं न, त हुननि जी तरबियत मोबाइल फोन कंदो। हुन जेके टिकटॉक वग़ैरह या फेसबुक आहे, मुल्कनि शयुनि कनि पिया, उहे ॾिसनि पिया जिन मां हुननि जी तालीम ऐं तरबियत ते असर पवे ऐं उहे उन मां फ़ाइदो हासिल कनि। असां वटि जेका तालीम ऐं तरबियत जी ॻाल्हि त रही परे।

गुलाम सिंधु मुराणी जी खूबसूरत आवाज है ऐं तव्हां एंजॉय करे रहिया आहियो इन सॉन्ग खे। चवे थो असांजे दिल ते तव्हां जी हुकूमत जीअं वणई तीअं हलाए, असांखे थींदो बि ईअं ई आहे। जंहिंजी दिल ते अगरि कंहिंजी हुकूमत हूंदी आहे त पोइ उन जी मर्ज़ी हूंदी आहे हुनखे कहिड़े तरीक़े सां हलाए। त असांजे प्रोग्राम में बि उन्हनि माण्हुनि जा मैसेज शामिल कयूं था जंहिंजी असांजे दिल ते बि हुकूमत आहे। इरशाद अली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो मनहड़ो चोदगीअ खां, ऐं अदा इरशाद मनहड़े में असांजा काफ़ी दोस्त आहिनि, ऐं मनहड़ो ॾाढो भलड़ो शहर आहे, मोहबती माण्हुनि जो शहर आहे। मिठा महिरबानी तव्हांजी, मुंहिंजा भाउ चए थो अस्सलामु अलैकुम, ऐं मुमताज़ मोलाई जी कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा प्यारा मुमताज़ मोलाई ऑलरेडी मां प्ले कयो आहे, ऐं इनशाला ताला कोशिश कंदुसि त मां तव्हांखे मुमताज़ मोलाई जो कलाम ॿुधायां।

चवे तो भाई साहब कैसे हो। पैगामी शामिल है शाजिया शेख जे सॉन्ग जी अच्छा इन आए तो चवे तो अदी आए असि शाजिया शेख चवे थी भाई साहब कैसे हो तो बिल्कुल ठीक ठाक आया ज अदी चवे थी तो असा निगर नाज जो कलाम बुधरा बाजी सुमेरा के बारे में पुछे भी तो बाजी सुमेरा कदें इंदी तो बाजी सुमेरा बिल्कुल ढो जबरदस्त शो कन्दी है बाजी सुमेरा इनशाला जरूर अस नेटवर्क से वापस इंदी परेशान न थो दिल वडी कर जी एफ एम नेटवर्क अड़े तरीके से बुधा रहो मुख्य लगे तो पीरगोट खां लिखी रहा है मुझे शो में अग में भी बे दफा मैसेज आया यो मुझे अंदाजो है बाकी बो मैसेज जो तुम उन्होंने भी बुधा जो तुम किथा का लिखी रहा है

रियाज़ अहमद बांधी मां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो चए थो अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम जा मिठा चवे थो असांखे मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॿुधायो यार बिल्कुलु मास्टर मंज़ूर जो कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ॿियो मैसेज अदा जन कयो आहे महिरबानी प्यारा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो हुन जे लाइ तमामु घणियूं महिरबानियूं लख कुर्बे लख अहसान असांजे प्रोग्राम में शामिल आहे सखर खां आई अब्दुल रहीम अहमद मुगल जे कलाम जी अदा जन फरमाइश खे बि अदा साईं मां तव्हांजे पसंदि जो कलाम प्ले करे छॾियो आहे मोला तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद हुजो खिलंदा रहो मुस्कराईंदा रहो ऐं तव्हां समेत जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उहे समूरा अहिड़े तरीक़े सां खिलंदा मुस्कराईंदा रहनि अहिड़े तरीक़े सां असांजे शो में बि शामिल थींदा रहनि।

0: हर दिन हर
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो उधर रहो।
0: इट्स 1:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम दर्द सूजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

मुझे बेटा सही कें आहे पने किताब किताब में लिखो है त पांजी इज्जत ऐ साख जो मतलब आहे त पांजी सच्चाई सुनाण ऐ उन के इज्जत दियण वो एक अड़ी शे आहे जेका इंसान के मुतमिन करे थी त मु जड़ो बियो को बनाए त मुझे मिठा इंसान की जिंदगी में सब खां अहम शे संदस इज्जत हुंदी आहे दौलत ताकत या उहदा सब आर्ज़ी हूंदा आहिनि पर इज़त हिकु अहिड़ो खज़ानो आहे जेको जेकॾहिं विञाइजी वञे थो न त वरी आसानी सां वापसि नथो मिले उन करे हर इंसान खे घुर्जे त हू पंहिंजी इज़त खे हमेशह अवलियत ॾिए पंहिंजी इज़त जी हिफ़ाज़त करण जो उहो मतिलबु आहे त इंसान पंहिंजे किरदारु ॻाल्हाइण ऐं अमलनि ऐं ईमानदारी ऐं सचाई इख़्तियार करे को बि अहिड़ो कमु न करे जेको खेसि माण्हुनि जे नज़र में घटि करे इज़त रुगो ॿाहिरी ॾेख सां न पर सुठनि इख़लाकनि सां पैदा थिए थी जेको माण्हू ॿियनि सां सुठो सलूक करे थो न वाइदो निभाए थो ऐं सचु ॻाल्हाए थो उहो हमेशह इज़त वारो सम्झो वञे थो तव्हांखे ख़बर आहे त समाज में अहिड़ा केतिरा ई मिसाल मिलनि था जिते माण्हू थोरे फ़ाइदे जे लाइ पंहिंजी इज़त विञाए वेहनि था पर अहिड़ो फ़ाइदो बेकार हूंदो आहे छाकाणि त इज़त विञाइण खां पोइ माण्हू अंदरूनी तौर बि बेचैन रहंदो आहे इज़तदार ज़िंदगी असल जेका ख़ुशी आहे न उहा हिन इज़तदार ज़िंदगी में ई मिले थी हुन खां अलावा इज़त जो तालुक़ु ख़ुदि एतमादीअ सां बधल आहे जेको माण्हू पंहिंजी इज़त करे थो उहो ॿियनि खां बि इज़त हासिल करे थो अहिड़ो इंसान कॾहिं बि ग़लति रस्ते ते न हलंदो आहे छो त खेसि ख़बर हूंदी आहे त संदसि हर अमल संदसि सुञाणप आहे इज़त इंसान जो असल ज़ेवर अथव उन खे बचाइण हर फर्ज़ जी ज़िमेवारी आहे जेकॾहिं असां चाहियूं था त समाज बहितर बणिजे न त हर हिक खे पंहिंजी इज़त सां गॾु ॿियनि जे इज़त जो बि ख़्यालु रखणो पवंदो मुंहिंजा बेठा साईं मुंहिंजे प्ले लिस्ट में हिकिड़ो सॉन्ग आहे ॾाढो ज़बरदस्त आहे अछो त हुनखे बि गॾु गॾु इंजॉय कंदा हलूं

मुझे मिठा सही मोहब्बत इंसान जी दिल जो वो पाक सच्चो एहसास है जो दुनिया की हर खुशी का कीमती होंद है। मोहब्बत रुगो के एक शख्स से लागापल न है पर वह एक अड़ी वसी जज्बे जो नालो है जो इंसान के इंसान से इंसान के पांच रब से इंसान के समूरी कायनात से गंदे तो। मोहब्बत की असल माना है सच्चाई खुलूस कुर्बानी। जद इंसान कैसा सच्ची मोहब्बत करे तो उन खुशी में पांच खुशी समझे तो उन दुखन के पांजा दुख समझे तो। अड़ी मोहब्बत में को भी मतलब या लालच शामिल ना होंगी बल्कि वह सिर्फ दिल की सच्चाई से बदल होंगी है। मोहब्बत इंसान की जिंदगी के खूबसूरत बनाए थी। वह नफरत हसद कावड़ जड़न मनफी जज्बन के न खत्म करे थी। दिल में नरमी सुकून पैदा करे थी। जै दिल में मोहब्बत होंगी है वह इंसान बेन सा हमदर्दी रहम शफकत से पेश इन्द है। अड़े मानू से हर कोई मोहब्बत कन्द अव। इस्लाम में भी मोहब्बत के वही अहमियत दिनी वही है। अल्लाह पाक इंसान के पान में मोहब्बत भाईचारे इताद से रहन जो हुक्म दिनो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जिंदगी मोहब्बत रहम शफकत जो बेहतरीन मिसाल है। पान दुश्मन से मोहब्बत नरमी से पेश इंदा हुआ। मोहब्बत सिर्फ लफ्जन तीन महदूद ना होंगी मुझा साई नई होजन घुर्जे पर अमलन में भी नजर अचान घुर्जे। वालदेन से मोहब्बत उस्ताद से इज्जत दोस्त से वफादारी समाज से खैर ख्वाह उ सब मोहब्बत जहाँ मुख्तलिफ रूप अव। जडे असे अमलन जरिए मोहब्बत जो इजहार कदा तदे उ हकीकी माना में पाक जज्बो बन वी है।

0: सोलर एंड बैटरी।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

0: It's 1:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते नूर मुजो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Kya aap asabi dard, jodon ki takleef,
5: kamar dard ya patthu ki sujan hai?
4: Ab dard ko kahein alvida.
5: Index ointment ke saath.
4: Ji haan.
5: Fakiri marham banane walon ki fakhriya peshkash.
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है
5: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
4: गर्दन और कमर की तकलीफ
5: पट्टों के खिंचाव मोच
4: चोट पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद
4: मुतासरा जगह पर दिन में दो से तीन मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
4: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार
6: अब आपकी फैन

0: रहने तरफ
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के हो तो आवाज़ भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे। सऊदी ते हमलो पाकिस्तान ते हमलो समझो वेंदो। पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो। ख़बरू इदारे मौजूदु पाकिस्तान जी आला सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो आहे त हुसैन सऊदी अरब ते हमला वधाया।

0: अमेरिका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मिज़ाइल हमला, पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 7 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी फोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बूशहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए गॾींदड़ पुल खे बि अमेरिका तबाह करे छॾियो। अमेरिकी सेंटका मूजिब ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो।
1: अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मौजूद बहरीन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ऐं जासूस जहाज़नि खे निशानो बणायो आहे। शाम में बि अमेरिकी फ़ौजी कमांड खे निशानो बणायो वियो। कतर, ओमान, कुवैत ऐं इराक में बि अमेरिकी अॾनि खे मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं सबबि अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियत तबाह थी आहे।

टे इलेक्शन में मुदाखलत ए 22 करोड़ वोटर्स की डेटा चोराने जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI के चीन खिलाफ जांच जो हुक्म दई छो। कौम के खिताब करें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन अमेरिकी चूंडन की डेटा हैक करने की कोशिश कर रो है। चीन अमेरिकी सदारती चूंडन जहा नतीजा तब्दील कर चाहे तो। 2020 की इलेक्शन में भी चीन हथ चुराने की कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जो 22 करोड़ फाइल्स हासिल कर वरती। अमेरिकी गुजा इदारा चूंडन बाबत इंटेलिजेंस मालूम फौरी तौर जारी कन। तफसील सामू अचण से इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियों खत्म थन्दियों।

सिंध हुकूमत पारां कराची जे यूनिवर्सिटी रोड जे मक़सद ट्रैफिक लेन जल्द खोलण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठ रेड लाइन BRT मनसूबे बाबति इजलास। मनसूबे जे मुख़्तलिफ़ हिसनि ते जारी तामीराती सरगर्मियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शर्जील इनाम मेमण चयो त रेड लाइन BRT कराची वासियुनि लाइ इनकलाबी सफ़री मनसूबो आहे। रेड लाइन BRT जो कम जल्द मुकमिल करण तरजीह आहे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद सफ़री सहूलियतूं ॾियण लाइ कदम खणी रही आहे।

0: डीजल 40 ऐं पेट्रोल 10 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। ओकरा पेट्रोल जे अघनि में रदो बदल बाबति समरी वज़ारत ॾांहुं मोकिले छॾी। ज़रियनि मूजिबि आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थियण बाद ओकरा पेट्रोल अघनि में वाधि जूं सिफ़ारिशूं तयार कयूं आहिनि। हतमी फ़ैसिलो हुकूमत कंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream।
4: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इनमें मौजूद वाइटामिन

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: त पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद दे थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लगण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GAFM 88 नेटवर्क ते।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का है ये दीप की रखवाली और मेहमान नवाज
1: ॾाढो सुठो
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध
2: PM. This time check is brought to you
3: by Neem Prickly.
4: Kirshi Mufid hai.
3: Fakiri Neem Soap.
4: Har achhe.

0: ट्रैफिक लेन जल्द खोलण जो फैसलो। सीनियर वजीर शर्जी लीला मेमण जी सदारत हेठ रेड लाइन BRT मनसूबे बाबति इजलास। मनसूबे जी मुख़्तलिफ़ हिसनि ते जारी तारीमाती सरगर्मियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शर्जी लीला मेमण चयो त रेड लाइन BRT कराची वासियुनि लाइ इनकलाबी सफ़री मनसूबो जो कम जल्द मुकमिल करणु तरजीह आहे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद सफ़री सहूलियतूं ॾियण लाइ क़दम खणी रही आहे।
1: डीजल 40 रुपया, पेट्रोल 10 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। ओगरा पेट्रोल जे अघनि में रदोबदल बाबति ख़बरी वज़ारत ॾांहुं मोकिले छॾी। ज़रिए मूजिबि आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थियण बाद ओगरा पेट्रोल अघनि में वाधे जूं सिफ़ारिशूं तयारु कयूं आहिनि। हतमी फ़ैसिलो हुकूमत कंदी।
0: चोहड़ जमाली भरसां पुलिस जो मजीद ओठो में पुलिस जी कार्रवाई दौरान वारनि पुलिस ते फायरिंग कई। गोलियूं लॻण सबबि अहलकार वाजिद थुमरो शहीद ऐं ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़ख़्मी थियो। ॾोहारी वाके बाद फरार थी विया।
1: कश्मीर जी चाचर पुल वटि औरत जो लाश हथ। ॻोठ मुहिब अली नसीराणी वासनि शरीफ़ा नसीराणी जो लाश केबी फीटर मां मिलियो। औरत जे वारसनि चयो आहे त खेसि मुड़ुस क़तलु कयो आहे। मुड़ुस जो चवणु आहे त ज़ाल घरां निकिरी केबी फीटर में टपो ॾेई आबगात कयो आहे। कुंडी वेझो रामो शाख मां बि लाश थिए। सुञाणप कुंडी वासी उस्ताद रंजीत कुमार जे नाले सां थी। पुलिस चयो आहे त वाके बाबति वधीक जांच करे रहिया आहिनि।
0: नंदो में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुतहद ऐं मज़बूत सिंध रैली। बदिन खे पाणी ॾेमारी समेत अॻवाद कराइण जो मुतालबो। नसीराबाद ऐं भरपासे में बि पाणी खोट ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक पारां एहतजाज कयो वियो।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम
2: सेंट नेटवर्क सेंट।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो गीत संगीत जो आवाज़ ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गढ़ करे रही है अपनी सरहद ते पाकिस्तान करर चला है। हजारे पाकिस्तानी फौजी एयरफोर्स जो एक स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुकर्र है। पाकिस्तान सऊदी अरब गुजर साल दिफाई वायदो कयो हो।

अमेरिका जा ईरान ते छह ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली बणायो। अमेरिकी हमतरी ईरानी फोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रेक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बूशहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमेरिका तबाह करे छॾियो। अमेरिकी सेनका मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरैन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला, अमेरिकी फौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मौजि बहरैन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऐं जासूस जहाज़नि खे शाम में बि अमान खे निशानो बणायो वियो। कतर, ओमान, कुवैत ऐं इराक में बि अमेरिकी अॾनि खे मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं सबबि अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियत तबाह थी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाखलत ऐं 22 की डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन

0: मुख्तलिफ इलाइकनि में ऑपरेशन कया विया। 24 कलाकनि दौरान ऑपरेशन दौरान 24 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। दहशतगर्द वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद मिलियो आहे। दहशतगर्द मासूम शहरनि जे कतल में बि मुलविस हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां खारजनि खे जहन्नुम भेड़ो करण ते फोर्सिस खे भेटा पेश। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान जी बका जो ज़ामिन आहे। आईनी ऐं कानूनी मामला धरना ॾियण सां हल नाहिन थींदा। एहतजाज कंदड़नि खे ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मुल्क में वॾनि तरक़ियाती मनसूबनि जो क्रेडिट नून लीग ॾांहुं वञे थो। हाणे बि तरक़ियाती कम नून लीग ई करे रही आहे। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सोलर सिस्टम मनसूबे बाबति इजलास। मुराद अली शाह पारां सोलर सिस्टम जी शफ़ाफ़ फिरासत यकीनी बणाइण जी हिदायत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 2,75,000 खानदाननि खे मुफ़्त सोलर सिस्टम फराहम कयो वेंदो। 18,20,00,000 ऐं 60,00,000 रुपया ख़र्च थींदा। मुराद अली शाह चयो त हीउ मनसूबो रुगो बिजली न पर ग़रीब खानदाननि जी ज़िंदगी बहितर बणाईंदो। पुठिते पयल इलाइक़नि में रहंदड़ माण्हुनि खे मनसूबे में तरजीह ॾिनी वञे। सिंध हुकूमत पारां कराचीअ जे यूनिवर्सिटी रोड जे मिक्स्ड ट्रैफिक लेन खे जल्द खोलण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शजीलना मेमन जी सदारत हेठि रेड लाइन BRT मनसूबे बाबति इजलास। मनसूबे जे मुख़्तलिफ़ हिसनि ते जारी तामीराती सरगर्मियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शजीलना मेमन चयो त रेड लाइन BRT कराचीअ वासियुनि जे लाइ इनकलाबी सफ़री मनसूबो आहे। रेड लाइन BRT जो कम जल्द मुकमल करणु तरजीह आहे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद सफ़री सहूलियतूं ॾियण जे लाइ क़दम खणी रही आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी FM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

देखिए रंग में रोज बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार चार हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: केदन के मिसाइल एंड ड्रोन जरिए निशानों बनाए पियो आए जैसे अब अमेरिकी दिफाई सलाहियत तबाह थी आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन के इलेक्शन में मुदाखलत 22 करोड़ वोटर्स की डेटा चोराने के इल्जाम डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI के चीन खिलाफ जांच का हुक्म मिले छो। कौम के खिताब कदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन अमेरिकी चूंडन की डेटा हैक करने की कोशिश कर रो है। चीन अमेरिकी सदारती चूंडन जहा नतीजा तब्दील कर चाहे तो 2020 की इलेक्शन में भी चीन हथ चुराने की कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जो 22 करोड़ फाइल्स हासिल कर वरतियों अमेरिकी गुझा इदारा चूंडन बाबत इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कन तफसील सामू अचण से इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियों खत्म थी। केपी के इलाके बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन 24 खारजी दहशतगर्द मारे वह ISPR मुझे बनू के मुख्तलिफ इलाक में ऑपरेशन क्या वह 24 कलाक दौरान ऑपरेशन दौरान 24 खारजी दहशतगर्द मारे वह दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद मिलो है। दहशतगर्द मासूम शहरन के कत्ल में भी मुलविस हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए घर वजीर मोहसिन नकवी पारा खारजन के जहनम भेड़ो करण से फोर्सेज के भेटा पेश। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका जो जामिन है। आइनी ए कानूनी मामला धरना डेण से हल नाहन थन्दा एहतजाज कदालू करण घुर्जन। वजीर आजम के सलाहकार राणा सनौला है तो मुल्क में वन तरक्याती मनसूबन जो क्रेडिट नून लीग डां वे तो हाँ भी तरक्याती कम नून लीग ही कर रही है। वे वजीर की सदारत हेठ सोलर सिस्टम मनसूबे बाबत इजलास। मुराद अली शाह पारा सोलर सिस्टम की शफाफ विरासत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास के ब्रीफिंग दीदे बुधाया तो 2,75,000 खानदान के मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किया वो 18 अरब 20 करोड़ 60 लख रुपया खर्च थन्दा। मुराद अली शाह चाहे ये मनसूबो रुगो बिजली न पर गरीब खानदान की जिंदगी बेहतर बनाई पुठते पयल इलाक में रहदड़ मान मनसूबे में तरजीह डी वे। सिंध हुकूमत पारा कराची के यूनिवर्सिटी रोड के मिक्सड ट्रैफिक लेन के जल्द खोलने जो फैसलो। सीनियर वजीर शजीलना मेमन की सदारत हेठ रेड लाइन BRT मनसूबे बाबत इजलास। मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से जारी तामीराती सरगर्मियों जायजो वरतो वो। शजीलना मेमन रेड लाइन BRT कराची वासन के लाइन

0: मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, सपात मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: यार कुछ डीहन का चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
2: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
1: इस्तेमाल किए कजे
2: मुतासिर थे हंद ते डी में ब का टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
5: yeah!

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: मम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: लगन। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: मेरे।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: कें एक जी गलती जी सजा बेखे न मिलन घुर्जे, एहतजाज कंदड़ गलत हुंदा पर सजा पूरे कश्मीर के मिली रही है। यो कड़े किस्म जो इंसाफ आ है जो इतने मोबाइल फोन ही नथा हलन। एहतजाज कंदड़न ए हुकूमत का मुतालबो आ है आम कश्मीरियन के तकलीफ न दियो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी जो आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में चूंड जलसे के खिताब। बिलाल भुट्टो जरदारी चो ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन जोड़ की तजवीज दिनी है पर इन वक्त ताई को जवाब ना है आयो। दरख्वास्त है तो कमीशन जो कम मुकम्मल थियण ताई एहतजाज ए कार्रवाई रोकियो वन। रियासत पाकिस्तान हर मुस लंग खोल रहे सके थी तो मुझो बंद कश्मीर भी खोल रहा है।

पंजाब सिंध जे एहतजाज एतराज ए सिंध असेंबली जे ठहराव के रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पानी छोड़ कर छो रसूल हेडवर्क्स ता जहलम दरिया जो पानी आसमाइशी बुनियादन ते न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ कयो वियो रसूल हेडवर्क्स ता लगभग 1,350 क्यूसिक पानी जो छोड़ इस तर्जुमान जो चवण आए पंजाब पैंजे हिस्से जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छो असां के कोई एतराज न आहे। इस साल 2014 में ही न्यू जलालपुर कैनाल लाइ एनओसी जारी करे चुकी हुई। 2014 में जलालपुर कैनाल जी सिंध मुखालफत कई हुई, बेनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल ख़िलाफ़ सीसीआई में बि आवाज़ उथारियो हो। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त गडि॒यल मफ़ादनि वारी काउंसिल अञा ताईं न्यू जलालपुर कैनाल जी मंज़ूरी न डि॒नी आहे। सीसीआई जी मंज़ूरी खां सवाइ कैनाल खोलणु मुनासिब न आहे। प्रिया कुमारी समेत सिंध मां 10 खां वधीक अगवा ऐं गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ बबरलो बाईपास वटि धरणो 12 ॾींहं बि जारी। कुझु देर बाद क़ौमी शाहरा बंदि करण जो ऐलान। सिंध वासियुनि खे शिरकत जी अपील। प्रिया एक्शन कमेटी अॻवाणनि जो चवण आहे त क़ौमी शाहरा ते धरणो ॿारनि जी बाज़ियाबी ताईं जारी रहंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़याम लाइ अहम किरदार अदा कयो आहे। खिते में जारी बहरान समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो आहे। गडि॒यल ऐं मज़बूत कोशिशूं ई अमन जो सबब बणजी सघनि थियूं। इस्लामाबाद में B2B कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त अमन अमल में फील्ड मार्शल जूं कोशिशूं तारीख़ में सदाई यादि रखियूं वेंदियूं। चीन पाकिस्तान जो इत्माद जोगो ऐं मुख़लिस दोस्त आहे। चीन हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो आहे। सिहत जे शोबे में $44 करोड़ जा मुआदा सुठो सवण आहिनि। सीड़पकारी ते चीनी ऐं पाकिस्तानी सीड़पकारनि खे भेटा पेश कयां थो। सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे। सऊदी ते हमलो पाकिस्तान ते हमलो समझियो वेंदो। पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो। ख़बरूं इदारे मूजिब पाकिस्तान जी आला सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो आहे त हुसियन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई वाइदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो। मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो। पाकिस्तानी क़यादत तुरियन खे मुतमइन करण जी कोशिश करे रही आहे। यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौजी जवान मुक़रर थियल आहिनि। हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी ऐं एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुक़रर आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: खाने को ढूंढना चाहता है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: से रिश्ता जोड़ा है, मेरी जिंदगी अजाब।
1: बस कर दो प्लीज।
0: कब तो उसके बारे में नहीं सोचोगे।
1: तो मेरी मोहब्बत
0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
2: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
1: तलाश कर रही थी
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींच और उछालिए। तुम लोगों ने, अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा।

0: की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: सफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत पलट।
1: एक बार जब कोई मोहब्बत करने थे तो

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज की आवाज जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज़।
3: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर चवे थो त 12 सीटूं सदन खीसे में आहिनि, जंहिंजी ज़हनियत अहिड़ी हूंदी त उन खे कश्मीर जी बि का परवाह न हूंदी। नून लीग डडियाल, मीरपुर, कोटली ऐं रावला कोट खे कश्मीर जो हिसो ई नथी मञे। वज़ीर आज़म वाज़े करे त संदसि बचाव वारो वज़ीर जेको चई रहियो आहे उहा संदसि पॉलिसी आहे या न। बचाव वारे वज़ीर जो बयान वज़ीर आज़म जी पॉलिसी नाहे त केस ॿाहिरि कढी छॾे। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े डडियाल में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो चयो त कंहिं हिक जी ग़लतीअ जी सज़ा ॿिए खे न मिलणु घुर्जे। एहतजाज कंदड़ ग़लति हूंदा पर सज़ा पूरी कश्मीर खे मिली रही आहे। एहतजाज कंदड़नि ऐं हुकूमत खां मुतालबो आहे त आम कश्मीरनि खे तकलीफ़ न ॾियो। तजवीज़ ॾिनी त ट्रुथ एंड रीकंसलेशन कमीशन जोड़ी वञे, पर हिन वक़्त ताईं न एहतजाज कंदड़नि ऐं न ई वरी हुकूमत जो जवाब आयो। दरख़्वास्त आहे त कमीशन जो कम मुकमल थियण ताईं एहतजाज ऐं कार्रवाई रोकियूं वञनि। रियासत पाकिस्तान हुरमज़ लंग खोलराए सघे थी त मुंहिंजो कश्मीर बंदि आहे, उहो बि खोलराए।

पंजाब सिंध जी एहतजाज एतराज ए सिंध असेंबली के ठहराव के रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पानी छोड़ कर छोड़ो। रसूल हेडवर्क्स तां जहलम दरिया जो पानी आजमाइशी बुनियादन से न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ कयो वयो। रसूल हेडवर्क्स तां लगभग 1350 क्यूसिक पानी जो छोड़। इरसा तर्जमान जो चवण है तो पंजाब पंजे हिस्से जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ो है, असांके को भी एतराज ना है। इरसा 2014 ईस्वी में ही न्यू जलालपुर कैनाल लाए एनओसी जारी कर चुकी हुई। 2014 ईस्वी में जलालपुर कैनाल की सिंध मुखालफत कई हुई, बेन सूबन हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल खिलाफ सीसीआई में भी आवाज उथारे हो। सिंध हुकूमत जो मौकिफ है तो गडियल मफादन वाली काउंसिल अना ताई न्यू जलालपुर कैनाल की मंजूरी न डिनी है। सीसीआई की मंजूरी का सवाए कैनाल खोलन मुनासिब ना है। प्रिया कुमारी समेत सिंध में 15 का वधीक प्रिया कुमारी समेत सिंध में 15 का वधीक अगवा गुम थियल बारन की बाजियाबी।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पक...
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो बदलता रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: ये

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: रक्त से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है।
2: प्रिया कुमारी समेत सिंध में वीह का वधीक अगवा ए गुम थियल मासूम बालन की बाजाबी लाए बबलो बाईपास वट कौमी शाहरा ते धरनो जारी। पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकन ईंदड़ वींदड़ ट्रैफिक मुअत्तल। बबलो बाईपास वट 22 डीन का धरनो हणी वेठल प्रिया एक्शन कमेटी के अगवानन वकीलन सिविल सोसायटी ए शहरन की वडे अंग में धरने में शिरकत। एसएसपी सखर अजहर मुगल गालन लाए धरने वाले हंध पहुतो। अगवाणन पारा बालन की बाजियाबी ताई धरनो खत्म करण का इंकार।
3: काबीना ने और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है शफाफियत इस निजाम में लाने के लिए ओबरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैन अल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और न सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आती है उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाए वो भी ओगरा को कहा गया है कि आवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुजीर है कि हम इस मामले को आगे शफाफियत के साथ लेके चलें और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे जरूर होगा पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान 90% अपनी तवानाई की जरूरत इंपोर्ट्स के जरिए मीट करता है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज भी एफआईए आईबी सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये कि नाजायज मुनाफा खोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म से हुई
4: दिस प्रोग्राम इज
5: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में इस जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर
6: गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान
7: गिव्स पास्ता
8: पूरे 50 रुपए की बचत के साथ लाइफ बॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक
9: इसमें है हाई क्वालिटी पीसी 5 साल की वारंटी के साथ
10: रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।